सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त है। यह हमें बताता है कि एक सच्चा मनुष्य बनने के लिए हमें सज्जनता और मधुर व्यवहार को अपनाना होगा। सज्जनता का अर्थ है अच्छे चरित्र, नैतिकता और आदर्शों का पालन करना। यह हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। मधुर व्यवहार हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है और इसीलिए सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त है। जब हम सज्जनता और मधुर व्यवहार को अपनाते हैं तो हम अपने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

0: सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज को एक नई उम्मीद, नई हिम्मत और नई मुस्कान के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह हमें एक और मौका देती है बेहतर बनने का और बेहतर करने का। आप सभी को एक खूबसूरत और सफल दिन की शुभकामनाएं। सुप्रभात, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर स्वागत है, जहां बात होती है दिल से दिल तक। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 हुए हैं और इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अते एवं तकनीकी अभियंता होलीराम बर्मन, और अपनी आवाज के साथ मैं आपकी RJ बिंदुंग दिंदोमांच। श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रभातकालीन प्रसारण सभा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज के हमारे प्रसारण सभा में क्या क्या होंगे। सुबह के ठीक 6 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। 6:10 पर प्रसारित होगा भक्ति गीत का कार्यक्रम। 6:40 पर हम लाएंगे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम गालो भाषा में समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे सुबह सवेरे का खास कार्यक्रम। 7:10 पर प्रसारित होगा आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:15 पर हम सुनेंगे मॉर्निंग इंफरटेनमेंट का कार्यक्रम। 7:35 पर श्रोताओं आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:40 पर प्रसारित होगा हमारा कार्यक्रम सदाबहार, जहां हम आपको बताएंगे मौसम का हाल। ठीक 8 बजे श्रोताओं आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद 8:30 पर आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। 8:40 पर हम लाएंगे आपके लिए हेलो ईटानगर का कार्यक्रम, जिसके बाद ठीक 9 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। 9:10 पर श्रोताओं आप सुनेंगे फिल्मी गपशप, बात करेंगे हम बॉलीवुड की खबरों के बारे में, देंगे आपको मूवी रिव्यूज, बताएंगे आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। 10 बजे श्रोताओं आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद 10:10 पर हम लाएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जहां पर हम वही गीत प्ले करेंगे जो आपके दिल के है करीब। जी हां, आप हमें तुरंत मैसेज कर सकते हैं और हम आपके मैसेजेस को देखेंगे और हम आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट्स प्ले करेंगे ठीक 10:10 पर रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम में, जिसके बाद श्रोताओं 11 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे प्रभातकालीन प्रसारण सभा की रूपरेखा। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की

0: मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ के स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said, India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said, the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle sales surged by over 20% during the period, driven by 20% growth in two-wheelers and nearly 30% in three-wheelers. He stressed that an 8% increase in steel and cement consumption proves that construction, housing and commercial activity are expanding rapidly. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the Islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also served as Deputy Chief Minister of the state. Union Home Minister Amit Shah arrived in Goa last night on a three-day visit, during which he will chair the 28th meeting of the Western Zonal Council. Today, he is scheduled to chair a Home Ministry meeting, address a press conference and inaugurate the BJP's new state office. In Chhattisgarh, the National Investigation Agency Special Court in Jagdalpur has convicted all 10 accused in Jhelum Valley Maoist attack case under various charges. A total of 11 accused were tried in the case, of whom one died during the trial. The court found all 10 accused, including two women, guilty of the murder of 29 people and attempt to murder 15 others. The order on the quantum of punishment has been reserved for September 16th. In May 2013, Maoists attacked a convoy of Congress leaders in Jhelum Valley. 29 people, including senior Congress leaders, were killed in this dastardly attack. The National Board of Examinations in Medical Sciences has successfully conducted the NEET PG 2026 examination for the affected candidates of the ION Digital Zone Sitapura Test Centre in Jaipur. In a social media post, Ministry of Health and Family Welfare said that the examination was held across five test centres in Jaipur in a secure, fair and transparent manner and concluded smoothly yesterday. In women's cricket, India defeated Pakistan by 7 wickets in a one-sided Women's Asia

समय है हमारा विशेष प्रस्तुति भक्ति गीत का, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की महिमा, श्रद्धा और प्रेम से भरे मधुर भजन और भक्ति गीत। इस शुभ शुभ प्रभात में जब प्रकृति भी धीरे धीरे जाग रही है, आइए हम भी अपने मन को पवित्र विचारों और भक्ति रास में भर ले। कुछ पल के लिए रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का भक्ति गीत और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर बने रहे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए।

0: श्रोताओं, ये था हमारा भक्ति गीत का कार्यक्रम। अब आप सुनेंगे घालो भाषा में समाचार।
1: सी आकाशवाणी ठानगर है तानगा दम रोगम जब हम दूला जीत पोर के लोकनाने जीतार सो कलो में किन अगो में मिलें जी रहे मेन किन मेन जिना गो गुमर लें दो। चाइना का गुक अरुणाचल प्रदेश ओक लद्दाख अपने गांगनाम तदूला अरुणाचल प्रदेश ओक गवर्नर निर्मित के टी पर नायक नरू स्टेट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओक पुलिस फोर्स गाद अपने आयोगत स्टेट बाउंड्री अपने पीड़ित मौके का अमला मेन पग जीतू ओक चाइना एम को इंडिया सो को अरु रिदेक लिगियो का अमला मेंटम गे बाम दूला अरुणाचल प्रदेश की चेन्यू चरे लो दोन में अरुणाचल की गत इंजी के चिमा को लो चाइना का द नाम नासु मुलुक ला दोलिन दा का सिगिम ने पुलिस और का सिपाही का द कागुरू तो का अमला दिन चिजाब मेंटम तातु मेंटा ला चाइना अला इंडिया ने ये क्यों रा पुगमिन दामिन जिला और का डेवलपमेंट अबालो कम लेकिन बरे बाम दूरी दा कम चाइना ते जी अनिना को इंची का सियो मानांगो दोबो ए बाम दूला मुनुक पॉलिटिकल मिलिटरी इकोनॉमिक और

दोस्तों, हम रोज थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। जब हम रोज थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और बॉडी एक्टिव फील करती है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो अंदर होता है। एक्सरसाइज से ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरली मूड को अपलिफ्ट करते हैं। इसीलिए जब हम उदास होते हैं, एंशियस होते हैं या अकेला महसूस करते हैं, एक सिंपल वॉक भी थेरेपी जैसे काम करती है। शायद इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि सुबह की सैर हजार बीमारियों की दवाई। आजकल हम सब बिजी हैं, किसी को ऑफिस, किसी को यूनिवर्सिटी, किसी को घर की जिम्मेदारियां, लेकिन हेल्थ के लिए जिम मेंबरशिप जरूरी नहीं होती। वॉकिंग, लाइट जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, डांस, स्पोर्ट्स, ये सब एक्सरसाइज है जो आपको खुशी दे, वही बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको डांस पसंद है तो डांस कीजिए। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, बैडमिंटन खेलिए। अगर आपको शांति पसंद है तो योगा करिए। मूवमेंट का मतलब है अपनी बॉडी को जिंदा महसूस करना। दोस्तों, आगे हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और गीत सुनाना चाहती हूँ। फिल्म जोधा अकबर का, जावेद अली की आवाज में। दोस्तों, सुनते हैं जश्न-ए-बहारा।

दोस्तों, योगा की बात करें तो योगा सिर्फ आसन नहीं, एक जीने का तरीका है। योगा हमें सिखाता है पेशेंस, बैलेंस और एक्सेप्टेंस। योगा से स्ट्रेस कम होता है, स्लीप

पिक्चर होती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है और इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। जब हम अपने सांस पर ध्यान देते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ना पास्ट की चिंता, ना फ्यूचर का डर, सिर्फ अभी का पल। और कभी कभी यही सबसे बड़ा सुकून होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम रेगुलर योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी स्ट्रॉन्ग फील करती है, पोस्चर इम्प्रूव होता है और हम अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ये एक साइलेंट मैसेज होता है जो हम खुद को देते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं तब दुनिया भी हमें थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। हेल्थ सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, छोटी छोटी हैबिट्स से बनती है। सुबह एक ग्लास गर्म पानी, हेल्दी ब्रेकफास्ट, थोड़ी सी सनलाइट, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम और रात को अच्छी नींद, ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल बनाते हैं। वेट लॉस हो या फिटनेस, ये रेस नहीं है, स्लो प्रोग्रेस ही सेफ है। अपने शरीर को पनिश करना नहीं, प्यार से गाइड करना होता है, जैसे हम अपने किसी छोटे दोस्त या पेट से का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। हम सुनेंगे प्यार की कश्ती में, उदित नारायण की आवाज में, फिल्म कहो ना प्यार है से।

0: दोस्तों, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब हम मूवमेंट करते हैं, एंजाइटी कम होती है, सैडनेस हल्का होता है और माइंड क्लियर होता है। सुबह का सूरज हर दिन नई शुरुआत देता है। अगर कल मिस हो गया, कोई बात नहीं, आज फिर से शुरू कीजिए। अपने आप को माफ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और एक हेल्दी रूटीन की तरफ छोटा सा कदम बढ़ाइए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ दोस्तों, आज का हमारा सुबह सवेरा यही समाप्त होता है। याद रखिए, सेहत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन थोड़ा सा एफर्ट से जरूर बनती है। तो दोस्तों, अब आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ।
1: कार्यक्रम

0: मॉर्निंग इंफोटेनमेंट का ये खास प्रसारण। श्रोताओं, इससे पहले कि हम शुरू करें आज की बड़ी खबरों के साथ, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक बहुत ही एनर्जेटिक सा सॉन्ग, जिससे आप बिल्कुल एनर्जाइज फील करेंगे और आपका दिन भर एक्टिव हो। हम सुनेंगे फिल्म तारजन का ये गीत ऊ लाला रे।
1: Hey you guys, listen to me, baby, say ooh la la la.

सुप्रभात, नमस्कार। ईटानगर आप सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग इंफोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां हम लेकर आते हैं सुबह की बड़ी खबरें, जरूरी अपडेट्स और आपके आसपास से जुड़ी खास जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे

चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के बड़े खबरों के साथ। बोडुमसा में एसआईआर हियरिंग के दौरान हिंसा जांच की मांग। सबसे पहले एक अहम खबर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के बोडुमसा से। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर हियरिंग के दौरान 4 सितंबर को बोडुमसा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में हिंसा की घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन यानी आपसू के मेंबर्स और कुछ लोकल यूथ्स इलेक्टोरल रोल्स में कुछ चाकमा हाजोंग सेटलर्स के नाम को लेकर ऑब्जेक्शंस दर्ज करने पहुंचे थे। इसी दौरान बहस बढ़ गई और सिचुएशन रिपोर्टेडली वायलेंट हो गई। आपसू का आरोप है कि उसके एक्टिविस्ट पर हमला किया गया। इस घटना में आपसू एक्टिविस्ट खोदा लाजर को रिपोर्टेडली चोट लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें स्टिचेस भी लगे। दूसरी तरफ ऑल इंडिया चाकमा स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट दृश्यमुनि चाकमा ने कहा कि कम्युनिटी के लोग वायलेंस में शामिल नहीं थे और कुछ मिस्क्रियंस ने उनके लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की। एडीसी ऑफिस की तरफ से भी कहा गया है कि ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल को डैमेज किया गया, कुछ एसआईआर एप्लीकेशंस को नुकसान पहुंचाया गया, एक गवर्नमेंट व्हीकल डैमेज हुआ और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ मारपीट की गई। आपसू ने इस इंसिडेंट की जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और चाकमा हाजोंग इनहेबिटेड एरियाज में एसआईआर प्रोसेस को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। आपसू ने ये भी अनाउंस किया है कि 12 सितंबर को ईटानगर में चाकमा हाजोंग रेफ्यूजी इश्यू पर एक मास कंसल्टेटिव मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस बीच अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम यानी AITF ने भी इंसिडेंट की कड़ी निंदा करते हुए इम्पार्शियल इंक्वायरी की डिमांड की है। AITF का कहना है कि एसआईआर प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन, एप्लीकेबल लॉज और प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक स्ट्रिक्टली कंडक्ट होना चाहिए। आंसू और TMWS ने भी की हमले की निंदा। इशू का एक परमानेंट लोफुल और जस्ट सोल्यूशन निकालने की भी अपील की है। वही तांगसा मुंग वेलफेयर सोसाइटी यानी TMWS ने भी आपसू और ऑल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर्स पर एलिजेड अटैक की निंदा की है। TMWS ने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से एलिजेड परपेट्रेटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने और एसआईआर ड्यूटी में लगे स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को एडिक्वेट सिक्योरिटी देने की मांग की। साथ ही सोसाइटी ने इंडिजिनस कम्युनिटीज से की है कि अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की प्रोवोकेशन का शिकार ना बने। चलिए बात करते हैं अब स्पोर्ट्स की। अरुणाचल में गोल्फ को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। अरुणाचल प्रदेश में गोल्फ को प्रमोट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव सामने आया है। अरुणाचल गोल्फ एसोसिएशन ने स्टेट में एक गोल्फ कोर्स एस्टेब्लिश करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने का फैसला किया है। ये डिसीशन एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में अरुणाचल में गोल्फ के डेवलपमेंट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लियर रोड मैप पर भी डिस्कशन हुआ। AGA ने अरुणाचल में मौजूद गोल्फ क्लब्स को एसोसिएशन के साथ एफिलिएट होने के लिए इनवाइट करने का भी फैसला किया है। मीटिंग में स्टेट

के गोल्फर्स की रीजनल, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट किया गया। एसोसिएशन के ऑफिशियल्स के मुताबिक अरुणाचल के गोल्फर्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को एक स्ट्रक्चर्ड गोल्फ इकोसिस्टम की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में अरुणाचल की गोल्फ कंटिंजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था और टीम ने 8 स्टेट कंटिंजेंट्स में 4th पोजीशन हासिल की थी। अब एजीए का फोकस है कि स्टेट में गोल्फ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज को और मजबूत बनाया जाए। अब बात करते हैं बिजनेस की और एक सिविक अपडेट की। बिना वैलिड ट्रेडिंग लाइसेंस चल रही दुकानों पर एक्शन। पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के यूपिया और टिकदो एरियाज में अथॉरिटीज ने जॉइंट मार्केट इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई। इंस्पेक्शन के दौरान 5 शॉप्स बिना वैलिड ट्रेडिंग लाइसेंस के ऑपरेट करती हुई पाई गई, जबकि 2 शॉप्स के लाइसेंस एक्सपायर हो चुके थे। स्कूल प्रमिसेस के आसपास कुछ शॉप्स से टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस भी सीज किए गए। अथॉरिटीज ने शॉपकीपर्स को ट्रेडिंग लाइसेंस ऑब्टेन या रिन्यू करने के लिए 30 दिन का टाइम दिया है। साथ ही शॉपकीपर्स को वार्न किया गया कि स्कूल कंपाउंड्स के 100 यार्ड रेडियस के अंदर टोबैको प्रोडक्ट्स को स्टॉक, डिस्प्ले या सेल करना अलाउ नहीं है। रिपीट वायलेशंस के सिचुएशन में स्ट्रिक्टर लीगल एक्शन इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट को सील करने की कार्रवाई भी हो सकती है। इंस्पेक्शन के दौरान ऑफिशियल्स ने शॉपकीपर्स को रूल्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी अवेयरनेस दी। तो दोस्तों, एक बार फिर शॉर्ट में देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स। बोडुमसा में एसआईआर हियरिंग के दौरान वायलेंस की इंसिडेंट पर एआईटीएफ आंसू और टीएमडब्ल्यूएस ने इंक्वायरी और स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की है। आप सुने 12 सितंबर को ईटानगर में चकमा हाजोंग रेफ्यूजी इश्यू पर मास कंसल्टेटिव मीटिंग अनाउंस की है। अरुणाचल गोल्फ एसोसिएशन स्टेट में गोल्फ कोर्स एस्टैब्लिश करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेगी। वहीं पे पापुमपारे में बिना वैलिड ट्रेडिंग लाइसेंस चल रही शॉप्स पर इन्फोर्समेंट एक्शन लिया गया। स्कूल एरियाज के आसपास टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहल के इलीगल सेल को लेकर अथॉरिटीज ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। तो आज ये थी सुबह की इम्पोर्टेंट खबरें। दोस्तों, चलिए हमारे मॉर्निंग इंफोटेनमेंट प्रोग्राम के इस कार्यक्रम को अंत करते हैं एक और बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। हम सुनेंगे दुपट्टा तेरा नौ रंग दा फिल्म पार्टनर से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। दोस्तों, साथ ही इस गीत के बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार। तो बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार में, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं मौसम की, प्रकृति की, हमारे आसपास की दुनिया की और उन छोटी छोटी बातों की जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। मैं हूं आपकी मेजबान और आज की हमारे कार्यक्रम है प्रकृति हमारे जिम्मेदार। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का मौसम का हाल। आज 6 सितंबर ईटानगर में सुबह का मौसम कुछ बादली भरा रहने के बाद धीरे धीरे साफ होने की उम्मीद है। सुबह बारिश के कुछ दौर देखने को मिल सकते हैं। 7 से 9 बजे के बीच बारिश की संभावना ज्यादा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा बादल कम होंगे और धूप वापस आ सकती है। आज का अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शाम तक मौसम हल्का बादली भरा रह सकता है और रात में कई कई गरज के साथ आंधी तूफान या बारिश की संभावना भी बने रहेगी। फिलहाल तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस है और हवा हल्की चल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि हवा की गुणवत्ता एक्सलेंट यानी बहुत अच्छी है। तो अगर आज आप बाहर निकल रहे हैं सुबह बारिश को देखते हुए छतरी साथ रखना एक अच्छा फैसला होगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको सुनाना चाहती हूँ ये प्यारा सा गीत फिल्म एनिमल से। हम सुनेंगे पहले भी मैं।

दोस्तों, मौसम सिर्फ गर्मी, बारिश और ठंड का नाम नहीं है। मौसम हमें एक बहुत बड़ी चीज का एहसास दिलाता है, प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते का। जब बारिश होती है तो सिर्फ सड़कें गीली नहीं होती, बारिश पेड़ पौधों को जीवन देती है, नदियों और तालाब को पानी देती है, जमीन की प्यास बुझाती है और एक और अनेक जीव जंतुओं के लिए एक जीवन का सहारा बनती है। एक छोटी सी बारिश की बूंद भी प्रकृति के बड़े चक्र का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम प्रकृति को उतना ही दे रहे हैं जितना प्रकृति हमें दे रही है? हम अक्सर कहते हैं कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए और हरियाली चाहिए, लेकिन असल में ये हमारी सिर्फ जरूरतें नहीं, ये हमारे जीवन का आधार है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी को कम करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं और पक्षियों और जानवरों को घर देते हैं। नदियां हमें पानी देती है, जंगल हमारे मौसम और जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, और प्रकृति हमें वो सुकून देती है जो किसी मशीन या टेक्नोलॉजी से नहीं मिल सकता। इसीलिए प्रकृति की रक्षा करना सिर्फ सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब सवाल आता है कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। सबसे पहले पेड़ लगाइए और उनकी देखभाल कीजिए। सिर्फ पौधा लगाना ही काफी नहीं, उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।

0: Pare Hydropower Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?

0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व तो आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु

0: वो पूंजी का उपयोग भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
1: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
2: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
3: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से आईआईटी मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू एआई एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर एआई की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा एआई, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, एआई को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
3: आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic

गुड मॉर्निंग और हेलो ईटानगर, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया की करोड़ों लड़कियों के बचपन, इमेजिनेशन और आइडेंटिटी का हिस्सा रही है। हम बात कर रहे हैं बार्बी के बारे में। पिंक ड्रेस, ब्लॉन्ड हेयर, पिंक कार, ड्रीम हाउस और एक सीमिंगली परफेक्ट लाइफ। लेकिन सवाल ये है, बार्बी सिर्फ एक डॉल है या फिर बार्बी ने हमें सोसाइटी, वुमेन, ब्यूटी, जेंडर रोल्स और फेमिनिटी के बारे में कुछ ऐसा भी सिखाया है जिसके बारे में हमने बचपन में कभी सोचा ही नहीं। आज की बात बार्बी से शुरू होगी, लेकिन असल में बात होगी हम सब की। दोस्तों, चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ये बहुत ही उम्दा गीत से, फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक।

आप में से कितने लोगों ने बचपन में बार्बी के साथ खेला है? स्टोर की शेल्फ पर बार्बी को देखना, फिर पेरेंट्स से कहना मुझे ये वाली चाहिए। कभी बार्बी डॉक्टर थी, कभी टीचर, कभी प्रिंसेस, कभी फैशन डिजाइनर, कभी एस्ट्रोनॉट, और कभी बस एक ग्लैमरस पार्टी में जाने के लिए रेडी होती थी। हम बार्बी को कपड़े पहनाते थे, उसके लिए घर बनाते थे, उसकी शादी करवाते थे, उसकी जॉब होती थी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम उसकी पूरी जिंदगी खुद क्रिएट करते थे। हम उसकी हिस्ट्री बनाते थे, उसका पेरेंट्स डिसाइड करते थे, और उसके फ्यूचर के ड्रीम्स भी। यानी बार्बी के साथ खेलना सिर्फ डॉल के साथ खेलना ही नहीं था, इट वॉज इमेजिनेशन, एक ऐसी दुनिया जहां हम डिसाइड करते थे कि एक लड़की क्या बन सकती है। यू कैन बी एनीथिंग। बार्बी की सबसे पावरफुल इमेज शायद ये है कि यू कैन बी एनीथिंग, और ये आइडिया जेन्युइनली एम्पावरिंग है। एक छोटी लड़की बार्बी को डॉक्टर के रूप में देखती है और सोच सकती है, मैं भी डॉक्टर बन सकती हूँ। बार्बी एस्ट्रोनॉट है, मैं भी एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ। बार्बी प्रेसिडेंट है, मैं भी लीडर बन सकती हूँ। इस सेंस में बार्बी ने जनरेशन ऑफ गर्ल्स को पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने का एक विजुअल दिया। लेकिन यही से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, क्योंकि अगर बार्बी कहती है यू कैन बी एनीथिंग, तो सवाल है क्या सोसाइटी वुमेन को वाकई कुछ भी बनने देती है? फिल्म बार्बी जो फिल्म है, उसमें हम एंटर करते हैं बार्बी लैंड में, एक पिंक एंड प्लास्टिक पैराडाइज। यहाँ विमेन डॉक्टर्स है, प्रेसिडेंट्स है, डिप्लोमैट्स है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस है, साइंटिस्ट है, हर फील्ड में विमेन सक्सेसफुल है। उनके पास ड्रीम हाउसेस है, लग्जरी कार्स है, पार्टीज है, और हर दिन परफेक्टली सीमिंग है। ये दुनिया रियल वर्ल्ड का ऑपोजिट लगता है, लेकिन फिल्म एक क्लेवर एक्सपेरिमेंट करती है। बार्बी लैंड में वो विमेन पावरफुल है और कैंस लार्जली उनके शेडो में है। केन का दिन डिपेंड करता है कि बार्बी उसे नोटिस करती है या नहीं, यानी शी इज एवरीथिंग एंड ही इज जस्ट केन। और यहाँ फिल्म हमें एक मिरर दिखाती है, जिस तरह बार्बी लैंड में केन्स को एक लिमिटेड आइडेंटिटी दी गई है, रियल वर्ल्ड में हिस्टोरिकली विमेन को भी रोल्स के बॉक्सेस में रखा गया है। जब रियल वर्ल्ड में केन जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि मेन को अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है, लीडरशिप मिलती है, और वो सोचता है मे बी दिस इज व्हाट आई नीड। केन पेट्रियार्की को बार्बी लैंड में लेकर आता है। सडनली बार्बी लैंड बन जाता है केंडम। विमेन के पावरफुल पोजीशंस चेंज हो जाते हैं। जो विमेन पहले डिसीजन लेती थी, वो सडनली मेन को ड्रिंक्स सर्व कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसी पावरफुल पोजीशन को भी ट्रिविलाइज कर दिया जाता है। फिल्म इस एग्जैजरेशन के थ्रू एक सीरियस पॉइंट करती है। जब जेंडर के बेसिस पर पावर डिवाइड होती है, तो आधी पॉपुलेशन की पोटेंशियल लिमिट हो जाती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। बार्बी की स्टोरी का मैसेज सिंपली ये नहीं है दैट मेन आर बैड। एक्चुअली फिल्म केन्स को भी सिंपैथी देती है। केन की इनसिक्योरिटी दिखाई देखिए, उसकी आइडेंटिटी बार्बी की अप्रूवल पर डिपेंडेंट है। वो फील करता है कि वो इनफ नहीं है, और जब उसे पावर मिलती है, वो उस पावर को इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए उसे यूज करता है। यहाँ फिल्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टच करती है। मेन को सोसाइटी कभी कभी सिखाती है स्ट्रांग रहो, टफ रहो, इमोशंस मत दिखाओ, पावरफुल रहो, और ब्यूटीफुल वुमेन का अटेंशन पाना भी अपनी वर्थ का प्रूफ समझो। लेकिन जब सेल्फ वर्थ अंदर से नहीं आती, तो पावर भी इनसिक्योरिटी को सॉल्व नहीं कर पाती। इसीलिए बार्बी के एंड में केन को एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन होता है कि बार्बी के अप्रूवल के बिना भी वो वैल्यूएबल है, ही इज केनफ। और ये मैसेज मेन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वुमेन के लिए। अब आते हैं बार्बी की सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री पर।
बार्बी डेकेड से ब्यूटी के एक वेरी स्पेसिफिक इमेज के साथ एसोसिएटेड रही है. स्लिम बॉडी, लॉन्ग लेग्स, परफेक्ट हेयर, परफेक्ट क्लोथ्स, ब्यूटीफुल फेस, और ये वही पॉइंट है जहां बार्बी की फेमिनिस्ट इमेज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. बार्बी गर्ल्स को कहती है यू कैन बी एनीथिंग, लेकिन साथ ही एक टाइम पर बार्बी का फिजिकल अपीयरेंस ये मैसेज भी दे सकता था दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल लुक्स लाइक. और यही कॉन्ट्रडिक्शन बार्बी के क्रिटिक्स ने, जो इन्हें क्रिटिसाइज किए थे, ने हाईलाइट किया कि बार्बी की अनरियलिस्टिक बॉडी और ओवरली सेक्सुअलाइज्ड अपीयरेंस को लेकर फेमिनिस्ट और कल्चरल क्रिटिक्स ने सालों तक क्वेश्चन उठाए. इवन आर्टिस्ट और फिल्म मेकर टॉड हेन्स ने बार्बी डॉल्स का यूज एक एक्सपेरिमेंट फिल्म में सिंगर कैरन कारपेंटर की लाइफ और एनोरेक्सिया को एक्सप्लोर करने के लिए किया था. यानी बार्बी सिर्फ एक टॉय नहीं, शी बिकेम अ कल्चरल सिंबल, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का सिंबल, कंज्यूमर कल्चर का सिंबल, फेमिनिटी का सिंबल और फेमिनिस्ट डिबेट का भी सिंबल. बार्बी के क्रिएटर रूथ हैंडलर भी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन रिप्रेजेंट करती है. उनका आइडिया था कि गर्ल्स को ऐसी डॉल मिले जो सिर्फ मदरहुड तक लिमिटेड ना हो. बार्बी के थ्रू गर्ल्स इमेजिन कर सके कि वो एक एडल्ट वुमेन बनकर क्या क्या कर सकती है. ये आइडिया अपने टाइम के हिसाब से काफी रिवोल्यूशनरी था, लेकिन बार्बी का डिजाइन एक सेक्सुअलाइज्ड आइडियलाइज्ड फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता था. यानी एक ही क्रिएशन में दो ऑपोजिट आइडियाज आ गए, फीमेल फ्रीडम और फीमेल ब्यूटी एक्सपेक्टेशंस. इसी कॉन्ट्रडिक्शन के वजह से बार्बी की स्टोरी इंटरेस्टिंग है. तो क्या बार्बी फेमिनिस्ट है? आंसर सिंपल नहीं है. बार्बी एक फेमिनिस्ट आइकन भी हो सकती है और पेट्रियार्कल ब्यूटी स्टैंडर्ड का सिंबल भी. वो गर्ल्स को एम्बिशन सिखा सकती है और साइमल्टेनियसली अनरियलिस्टिक बॉडी एक्सपेक्टेशंस भी क्रिएट कर सकती है. वो विमेन को पॉसिबिलिटीज दिखा सकती है और फिर भी एक नैरो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी रिप्रेजेंट कर सकती है. बार्बी इज कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन शायद इसी कॉम्प्लेक्सिटी को ग्रेटा गर्विग की फिल्म एक्सेप्ट करती है. फिल्म बार्बी को परफेक्ट नहीं बनाती, फिल्म बार्बी से सवाल करती है और बार्बी को खुद भी अपने एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन करना पड़ता है. फिल्म की बार्बी एक पॉइंट पर परफेक्ट नहीं रहती, उसके फीट फ्लैट हो जाते हैं, उसे सेल्यूलाइट्स हो जाती है, उसके दिमाग में डेथ के थॉट्स आते हैं और सडनली बार्बी को रियलाइज होता है कि समथिंग इज रॉन्ग. लेकिन एक्चुअली शायद कुछ रॉन्ग नहीं है, मे बी शी इज सिंपली बिकमिंग ह्यूमन. और ह्यूमन होने का मतलब है फियर, कंफ्यूजन, एजिंग, इम्परफेक्शन, पेन, लव, लॉस और अनसर्टेनिटी. बार्बी को फाइनली चॉइस मिलती है, परफेक्ट डॉल बनकर रहना या ह्यूमन बनकर रियल वर्ल्ड का हिस्सा बनना, और वो सेकेंड ऑप्शन चूज करती है. और फिर आती है ग्लोरिया. अमेरिका फरारा का कैरेक्टर एक मदर, एक एम्प्लॉई, एक वुमेन जो अपनी लाइफ में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच खुद को कहीं खो चुकी है. ग्लोरिया के थ्रू फिल्म वुमेन की एवरीडे रियलिटी दिखाती है. वुमेन से कहा जाता है ब्यूटीफुल रहो, स्मार्ट रहो, सक्सेसफुल रहो, गुड मदर बनो, गुड डॉटर बनो, गुड पार्टनर बनो, इंडिपेंडेंट भी रहो लेकिन टू इंडिपेंडेंट मत लगो, कॉन्फिडेंट रहो लेकिन एरोगेंट मत लगो, स्ट्रांग रहो लेकिन इंटिमिडेटिंग मत लगो. और सब कुछ करने के बाद भी किसी ना किसी पॉइंट पर लगता है मे बी आई एम स्टिल नॉट इनफ. यही ग्लोरिया के मोनोलॉग का हर्ट है. और ये स्पीच सिर्फ बार्बी के लिए नहीं था, इट वॉज फॉर वुमेन, ऑल ऑफ अस. तो जरा सोचिए, एक वुमेन ऑफिस में सक्सेसफुल है लेकिन घर से सवाल आ सकता है फैमिली के लिए टाइम है? एक वुमेन फैमिली को प्रायोरिटी देती है, सवाल आ सकता है करियर का क्या? एक वुमेन मेकअप करती है, लोग कहते हैं लुक्स पर ज्यादा फोकस है,
मेकअप नहीं करती तो कहते हैं कि अपना ख्याल नहीं रखते। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो कहते हैं टू एग्रेसिव। सॉफ्ट पर्सनालिटी हो तो टू वीक। यंग हो तो प्रेशर, ओल्डर हो तो जजमेंट, मदर हो तो प्रेशर, मदर ना हो तो क्वेश्चंस। तो एक वुमेन करे तो करे क्या? परहैप्स दैट इज द पॉइंट। सोसाइटी के पास वुमेन के लिए रूल्स बहुत है लेकिन फ्रीडम बहुत कम। ग्लोरिया का कैरेक्टर मदरहुड के एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को टच करता है। मदर्स अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को देते हैं और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो लेटिंग गो डिफिकल्ट हो सकता है। मदर का रोल सिर्फ चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना नहीं, कभी कभी मदर का रोल होता है चाइल्ड को खुद की दुनिया बनाने देना। फिल्म में रूथ हैंडलर का मैसेज भी इसी डायरेक्शन में जाता है। एक मदर कभी कभी पीछे खड़ी रहती है ताकि डॉटर्स आगे बढ़ सके। और परहैप्स मदरहुड की सबसे ब्यूटीफुल डेफिनेशन ये हो सकती है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी लेकिन तुम्हें अपना रास्ता खुद चूज करना होगा। दोस्तों, मैं कहना चाहती हूं कि बार्बी का ओरिजिनल इमेज एक वेरी स्पेसिफिक टाइप की वुमेन थी। व्हाइट, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, स्लिम एंड कन्वेंशनली ब्यूटीफुल। तो अगर फेमिनिज्म का मतलब सब वुमेन की इक्वालिटी है तो फेमिनिज्म इंक्लूसिव भी होना चाहिए। डिफरेंट स्किन कलर, डिफरेंट स्किन बॉडी टाइप, डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट करियर्स, डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट चॉइसेस। ओवर टाइम बार्बी ब्रांड ने डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड किया लेकिन फिल्म का लार्जर मैसेज ये है कि देयर इज नो सिंगल वे टू बी अ वुमन। तो आज हम बार्बी से शुरू हुए थे, एक प्लास्टिक डॉल से, एक पिंक वर्ल्ड से, एक चाइल्डहुड मेमोरी से, लेकिन डिस्कशन हमें ले आया है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तक, पेट्रियार्की तक, फेमिनिज्म तक, मदरहुड तक, सोशल मीडिया तक, सेल्फ वर्थ तक और फाइनली ह्यूमन होने तक। बार्बी का सबसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन शायद ये नहीं था कि वो डॉल से वुमन बनी। सबसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि उसने एक्सेप्ट किया परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, रियल होना इनफ है। और शायद हम सबको भी यही याद रखना चाहिए कि आपको बार्बी नहीं बनना, आपको किसी और की डिफिनेशन ऑफ परफेक्ट वुमन नहीं बनना, आपको बस अपना वर्जन बनना है। ऐसी वुमेन जो अपनी चॉइसेस खुद कर सके, ऐसी वुमेन जो अपनी मिस्टेक से सीख सके, ऐसी वुमेन जो अपने ड्रीम्स को सीरियसली ले और ऐसी वुमेन जो दूसरी वुमेन को नीचा खींचने के बजाय ऊपर उठाए। तो दोस्तों, हेलो ईटानगर में आज के लिए बस इतना ही। चलिए इस कार्यक्रम का अंत करते हैं इस गीत के साथ। गीत का नाम है कुरीनू नचने दे, फिल्म अंग्रेजी मीडियम से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को परास्त कर दिया गया है, आत्मविश्वास से भरे सशस्त्र बल दुश्मनों के घरों तक प्रहार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक शांति बहाल हो गई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे थे। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 23 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 3 विकेट पर 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उनका मुकाबला आज चीन के हेजी टिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
1: दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy.
1: देश की defense manufacturing अपने all time high पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का defense production कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
0: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और वक्त है दोस्तों फिल्मी गपशप का, जहां बातें होती है फिल्मों की, यादें होती है गानों की और मूड होता है एकदम फिल्मी। आज का फिल्म में गपशप होने वाला है थोड़ा खास, थोड़ा रॉयल और बहुत ही रोमांटिक, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले, एक ऐसी फिल्म के गानों की का जो जिसका नाम ही अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। नाम है प्रेम रतन धन पायो। राजशाही अंदाज, प्यार भरी कहानी, खूबसूरत लोकेशंस और मेलोडी से भरे गाने इस फिल्म ने रोमांस और फैमिली इमोशंस को एक साथ स्क्रीन पर सजाया। तो आज ना कोई लंबी बात, ना कोई ब्रेक इन द मूड, बस म्यूजिक, मेलोडी और प्रेम रतन की यादें। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपने दिल को थोड़ा फिल्मी होने दीजिए और तैयार हो जाइए एक के बाद एक सुपरहिट मेलोडीज के लिए। आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप और अब शुरू होता है प्रेम रतन धन पायो का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रतन धन पायो का एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। और चलिए शुरू करते हैं फिल्मी गपशप में, जहां बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी हर इंटरेस्टिंग खबर को हम लेकर आते हैं एकदम चटपटे अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्मी बातें, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त एक तरफ है मिर्जापुर, दूसरी तरफ एक छोटी सी फिल्म ने सबको सरप्राइज कर दिया है और बॉलीवुड के स्टार्स भी अपनी अपनी बातों से हेडलाइंस बना रहे हैं। मिर्जापुर और हनुमान अंश ने दिया बॉक्स ऑफिस को नया सिग्नल। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने

मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस सक्सेस को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात कही है। उनका कहना है कि इन दोनों फिल्मों की सक्सेस को सिर्फ फ्रीक हिट कहकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिर्जापुर द मूवी ने थिएटर में जबरदस्त ओपनिंग ली है। फिल्म ने इंडिया में पहले ही दिन में लगभग 24 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और ये एक नॉन स्टार लेड फिल्म के लिए काफी बड़ा ओपनिंग नंबर माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ है हनुमान अंश, एक रिपोर्टेडली सिर्फ 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म जिसका ओपनिंग डे कलेक्शन था सिर्फ 10 लाख रुपए। लेकिन पिक्चर यही इंटरेस्टिंग हो जाती है, 3 हफ्ते के बाद फिल्म की कलेक्शंस में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और रिलीज के 30वें दिन तक फिल्म लगभग 99 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी आया, एक दिन हनुमान अंश ने 8 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि बड़ी रिलीज टॉक्सिक फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स ने उसी दिन 7 करोड़ कमाए। यानी ऑडियंस का मूड समझना बॉलीवुड के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अनुभव सिन्हा का पॉइंट भी इसी तरफ है, ऑडियंस को सिर्फ बड़े स्टार्स, बड़े बजट या मैसिव स्क्रीन से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, कंटेंट और ऑडियंस कनेक्शन भी बहुत मैटर करता है। मिर्जापुर को करण जौहर का थम्स अप। और मिर्जापुर द मूवी की बात हो और बॉलीवुड से रिएक्शन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिल्म मेकर करण जौहर ने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन शेयर की और फिल्म को एक जबरदस्त थम्स अप दिया। उन्होंने मिर्जापुर को एक सॉलिड कड़क मसालेदार राइड बताया और कहा कि उन्हें सीरीज भी पसंद है और फिल्म भी उन्हें खूब एंटरटेन कर गई। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे फेमिलियर फेसेस वापस आए हैं, जबकि कुछ नए कैरेक्टर्स भी मिर्जापुर यूनिवर्स का हिस्सा बनने हैं। ओटीटी से थिएटर तक का ये सफर भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिर्जापुर ने पहले स्ट्रीमिंग ऑडियंस को अपना फैन बनाया और अब वही यूनिवर्स बड़े स्क्रीन पर ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। विपाशा बासु और विमेंस बॉडी इमेज पर इम्पोर्टेंट बात। अब बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट बॉलीवुड कन्वर्सेशन की तरफ। एक्ट्रेस विपाशा बासु ने रिसेंटली विमेन के बॉडीज को लेकर सोसाइटी के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पर खुलकर बात की। विपाशा ने कहा कि आज भी विमेन से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि बच्चे को जन्म देने के बाद वो तुरंत अपने 20s वाली बॉडी शेप में वापस आ जाए, लेकिन रियलिटी क्या है? प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मदरहुड और पर्सनल लाइफ, ये सब एक वुमेन्स बॉडी और लाइफ पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। विपाशा ने खुद बताया कि मदरहुड के बाद उन्हें भी बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका एटीट्यूड काफी स्ट्रांग रहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी जर्नी जानती है, उन्हें पता है कि उन्हें कब और क्या करना है और दुनिया की बातें उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऑनेस्टली दोस्तों, ये बात सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं, हर वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है। बॉडी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जज नहीं। अब एक फिल्म अपडेट जो काफी इंट्रीगिंग है। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग फिल्म पर काम शुरू हो गया है जिसमें मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो चुकी है और प्रोजेक्ट को अनुभव सिन्हा बैक कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी गांधी जी की जिंदगी के एक 21 दिन चैप्टर के अराउंड बेस्ड है। सुधीर मिश्रा के लिए ये प्रोजेक्ट पर्सनल भी है। उन्होंने बताया कि उनकी मदर ने बचपन में गांधी जी को देखा था और उनके साथ जुड़ी कहानियां उन्हें उनसे शेयर की थी। उनकी मदर के साथ की गई इन्हीं कन्वर्सेशन से फिल्म का आइडिया डेवलप हुआ। मनोज बाजपेयी ने भी रोल के लिए कंसिडरेबल वेट लॉस किया और एक स्पेशल डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर तक लखनऊ में चलने की बात की गई है। और फिल्म का एक इंटरेस्टिंग
एलिमेंट ये है, ये सिर्फ

गांधी जी की कहानी नहीं बल्कि फिल्म के अंदर फिल्म और एक एक्टर के डिलेमा को भी एक्सप्लोर करेगी। एक तरफ मिर्जापुर जैसे एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी का थिएट्रिकल धमाका, दूसरी तरफ हनुमान अंश जैसी छोटी फिल्म की अनएक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस जर्नी, बिपाशा बासु जैसे स्टार्स बॉडी इमेज और वुमेन्स एक्सपेक्टेशन पर इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं, और सुधीर मिश्रा और मनोज बाजपेयी गांधी जी की कहानी को एक यूनिक सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से लेकर आ रहे हैं। यानी बॉलीवुड में सिर्फ मसाला नहीं, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरीज का भी सीजन चल रहा है। तो फिल्मी दुनिया की ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और ये था आज का फिल्मी गपशप फिल्मी दुनिया बॉलीवुड की दुनिया आपके रेडियो पर। चलिए अब फिल्मी गपशप के इस कार्यक्रम का अंत करते हैं एक बहुत सुंदर सा गीत के साथ। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। जिसके बाद समाचार के बाद ठीक 10:10 पर हम फिर जुड़ेंगे और मैं आपके साथ लाऊंगी कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड पर वही सारे गीत बजते हैं जो आपके दिल के है करीब। तो अगर आप भेजना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट, अपने फेवरेट सॉन्ग्स रेडियो पर, तो आप हमें तुरंत मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9436887808। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए और हम आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे हमारे रेडियो ऑन डिमांड के अगले कार्यक्रम में, यानी कि इस कार्यक्रम में जो कि आ रहा है हमारे अगला जो प्रसारण में। दोस्तों चलिए अब सुनते हैं ये गीत रोया रे फिल्म धोखा से।

0: Senna.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के एक अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज तड़के उनका निधन हो गया।

0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1344 हो गई है। इस घटना में 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। नोवाकोट जिले में 10 दिनों तक कीचड़ और मलबे के नीचे दबी एक 60 वर्षीय महिला को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान के लिए कई मामलों में डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वो पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान है। बैडमिंटन में भारत की सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के ही हे जी टिंग और रेन जियांगजू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अर्जियन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया था। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, Today, Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest.
2: All time high पर है। आज भारत करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
1: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. Prime Minister Modi travelled by the Delhi Metro as he headed to SRCC to participate in the college's centenary celebrations yesterday evening. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. In Chhattisgarh, the National Investigation Agency's special court in Jagdalpur has convicted all 10 accused in Jhiram Valley Maoist attack case under various charges. A total of 11 accused were tried in the case, of whom one died during the trial. The court found all 10 accused, including two women, guilty of the murder of 29 people and attempt to murder 15 others. The order of the quantum of punishment has been reserved for September 16th. In May 2013,

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेडियो ऑन डिमांड पर हम वही सारे गीत प्ले करते हैं जो आपके दिल के है करीब। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि काफी सारा मैसेजेस आया है और हम सभी को कवर करना चाहते हैं, सभी का रिक्वेस्ट फुलफिल करना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड का ये खास कार्यक्रम। दोस्तों, सबसे पहला रिक्वेस्ट हमें आया है असम से। सुनीता बसुमतरी जी लिख रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म क्योंकि इट्स फेथ का ये गीत आजीले एक पल में। दोस्तों, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक की जोड़ी ने। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग। साथ ही सुनीता जी, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे ही हमें लिखते रहिए। हम बहुत गर्व, बहुत अच्छा फील करते हैं जब आप हमें लिखते हैं, क्योंकि रेडियो एक तरफा नहीं होता। अगर मैं बोलूं और आप ना सुने तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं, हमारे यहाँ प्रसारण करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए जब रेडियो ऑन डिमांड पर मैसेजेस आते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, खुशी महसूस होता है कि आप हमें सुन रहे हैं। और इसीलिए चलिए सुनते हैं अब आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट, आजीले एक पल में सौ जन्म।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमें हर्षित गोस्वामी जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं बोखाखात आसाम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये गीत पल पल दिल के पास। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड का कार्यक्रम। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर वही सारे गीत हम प्ले करते हैं जो आपके दिल के हैं करीब। तो अभी भी समय है, आप हमें तुरंत मैसेज कीजिए अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट, आपका फेवरेट सॉन्ग हम प्ले करेंगे हमारे इसी कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। नंबर नहीं है तो नंबर लिख लीजिए, नंबर है 9436887808। एक और बार बता देती हूँ, नंबर है 9436887808। तो चलिए अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमें ऑल द वे फ्रॉम मोकोकचुंग नागालैंड। लिख रहे हैं दिल बहादुर जी, और उन्होंने कहा हेलो ईटानगर, गुड मॉर्निंग, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे का ये गीत, जब तू मुस्कुराती, जिसे गाया है उदित नायक नारायण और पमेला जैन की जोड़ी ने। तो चलिए सुनते हैं दिल बहादुर जी। आशा करते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं, आप बने हुए हैं हमारे साथ। रिक्वेस्ट भेजने के लिए धन्यवाद। तो चलिए ये गीत सुनते हैं।

0: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to Rs 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और चलिए अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमें बिमल बसुमतरी जी की तरफ से। लिख रहे हैं धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से मैसाकी सापोरी असम, और वो इस गीत को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने दोस्तों को। उनके दोस्त के नाम है अमल बसुमतरी, गागे रावा, रमेश रूनू पात्र, लकी रोनो, विले मेठा, बाइकोन मुंडा, जोगेंद्र रोंगपी, देवशीष हजारिका, हितेंद्र दास, बीरेन हंस, चुबाके जमीर, कसीम अली, सुनीता बसुमतरी, सुप्रिया थापा और

साथ ही सभी आरजे और हमारे लिसनर्स को ये गीत डेडिकेट कर रहे हैं और उनका चॉइस ऑफ सॉन्ग है फिल्म मिशन कश्मीर से सोचो की झीलों। तो चलिए सुनते हैं उनका ये सॉन्ग रिक्वेस्ट।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर की अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें आया है सोम तुदू जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें जुबिंदा का ये गीत जाने क्या चाहे मन। चलिए दोस्तों सुनते हैं फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों चलिए लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। आर की गोस्वामी जी की तरफ से लिख रहे हैं बखत आसाम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म हमारी अधूरी कहानी का टाइटल ट्रैक हमारी अधूरी कहानी, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। तो चलिए सुनते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट।

दोस्तों चलिए रेडियो ऑन डिमांड पर अब सुनते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हम ले रहे हैं आसाम बोंगाल मोरा से लिख रहे हैं अशरफुल और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तेरे नाम फिल्म का तेरे नाम गीत. चलिए एंजॉय करते हैं अशरफुल जी के साथ उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट. साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समय के पाबंदी के कारण आज का ये हमारा आखिरी सॉन्ग रिक्वेस्ट होगा. क्षमा चाहते हैं कि हम सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरा नहीं कर पाए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि रेडियो ऑन डिमांड हर दिन आता है ठीक 10:10 पर. तो आप हमें कल भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट जरूर फुलफिल करेंगे. तो फिलहाल के लिए सुनते हैं तेरे नाम का ये गीत.

0: तो दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड पर आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपने हमारा ये कार्यक्रम पसंद किया। हमें कल भी लिखिए, परसों भी लिखिए, क्योंकि हम हर समय 10:10 पर यहाँ पहुँचते हैं आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट लेने के लिए। और अगर आज जिस जिसका सॉन्ग रिक्वेस्ट हम फुलफिल नहीं कर पाए वो हमें माफ़ कीजिए, आप हमें कल मैसेज कीजिए, हम आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट कल ज़रूर लेंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का पहला प्रसारण सभा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने इस प्रसारण सभा को एंजॉय किया, आप कुछ सीख पाए, मैं आपको कुछ बता पाई, कुछ नया। यही हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि लोग जो हमें सुन रहे हैं वो क्वालिटी कंटेंट ले। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुँचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अते एवं तकनीकी अभियंता होलीराम बर्मन। और अपनी आवाज के साथ मैं थी आपकी RJ बिंदुंगदेन दोमांज। वक्त हो गया है मेरे आपसे विदा लेने का, लेकिन दोस्तों आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए आगे हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं RJ नूरी। आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
2: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाए। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। मिस्र की एक अदालत में टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास से अवैध हथियार होने की बात भी सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें नशीले पदार्थों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया था। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई

अरुणा फिल्म 103.1 मेगा हर्ट्स के हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अरुणा 103.1 मेगा हर्ट्स पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। अब फिर से वक्त हो गया है आकाशवाणी के अरुणा फिल्म 103.1 मेगा हर्ट्स पर सुनने का कार्यक्रम फिल्मी लहर। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ा मौका नहीं चाहिए, कभी कभी बस एक नई शुरुआत, एक सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने का साहस ही काफी होता है। तो दोस्तों आज की सुबह हमारे लिए सिर्फ एक और सुबह नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है और एक खूबसूरत रेडियो यात्रा को आगे बढ़ाने का एक नया संकल्प है। और मैं हूँ आप सबके साथ, आप सभी की रेडियो साथी आरजे नूरी। और आज इस नए प्रसारण के साथ आपसे जुड़ गए, मुझे बेहद खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है। और दोस्तों हमारी दूसरी प्रसारण सभा अब शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पहले प्रसारण सभा के आरजे मंच को, जिन्होंने बेहद खूबसूरती से स्टूडियो को हमें सौंपा है। और मेरे साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है, अब तक पहुंचे ये कार्यक्रमों का ये सिलसिला बड़े जोरदार से है। तो साथ है तकनीकी अभियंता एन विश्वजीत और प्रसारण अधिकारी पी डोले। और हमारी दूसरी प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने में जिन्होंने भी मदद की है उन सब का धन्यवाद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम फिल्मी लहर।

दोस्तों कार्यक्रम है फिल्मी लहर और फिल्मों से हमारा यानी हम हिंदुस्तानियों का रिश्ता बहुत ही गहरा है और फिल्मी गानों के साथ तो जैसे जन्मों जन्मों का नाता है और हम अगर हिंदुस्तानी पैदा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता क्योंकि हिंदी फिल्मी गानों का जादू ना हिंदुस्तान के बॉर्डर्स को छोड़कर अब विदेशों में भी अपना जादू फैला रहा है। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम सब ने कल मनाया टीचर्स डे और उस टीचर्स डे को मनाने के बाद का जो मन में रिस्पेक्ट है हमारे टीचर्स के लिए वो और ज्यादा बढ़ गया है। चलिए आज के दिन को हम डेडिकेट कर दें हमारे टीचर्स को और फिल्मी लहर के माध्यम से हम सुनेंगे वो गाने जो शिक्षा और हमारे गुरुओं के नाम हैं। चलिए शुरुआत करते बेहद ही खूबसूरत गीत रुक जाना नहीं से।

तो दोस्तों हमारे गुरु को समर्पित कार्यक्रम फिल्मी लहर आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर शुरू हो चुकी है। फिल्म इम्तिहान के इस खूबसूरत गीत के साथ, जहां कहीं न रुक जाने का साहस दिलाते हुए एक शिक्षक की कहानी पर आधारित फिल्म से ली गई है। दोस्तों कल था टीचर्स डे, वो दिन जब हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि हमें जीना सिखाया और सीखना, गिरकर उठना और खुद पर विश्वास करना सिखाया। एक शिक्षक सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर शब्द नहीं लिखता, वो हमारे भविष्य की तस्वीर बनाता है। कभी डॉक्टर, कभी डांट कर तो कभी समझा कर, कभी हमारी गलतियां सुधार कर और कभी सिर्फ एक छोटी सी बात कर कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगे। इस तरह से हमें सींचता है, हमें रोकता है और हमें आगे बढ़ाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार एक शिक्षक का सही यही विश्वास किसी बच्चे को पूरी जिंदगी आत्मविश्वास देता है और उसे आगे बढ़ने का साहस देता है। इसलिए आज की फिल्मी लहर समर्पित है उन सभी शिक्षकों के नाम, उन गुरुओं के नाम जिन्होंने हमारी जिंदगी में ज्ञान का दीप जलाया, उन शिक्षकों के नाम जिन्होंने हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई बल्कि जिंदगी पढ़ना सिखाया, यानी कि जिंदगी को समझना सिखाया और जिंदगी से जूझने का हिम्मत सिखाया। चलिए आगे और सुनते हैं फिल्मी लहर में एक और बेहद खूबसूरत गीत जो आप सभी को बहुत पसंद आया। कहते हैं ऐसे गुरु जिन्होंने आपको पढ़ना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया, वो बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बना देता है कि बस वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है और दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: मेहमान तू।
1: अरे गौरी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक

0: बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो,
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।

दोस्तों, फिल्म लहर में ये गीत फिल्म तारे जमीन पर से लिया गया है और फिल्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी अपनी एक खास प्रतिभा होती है। केवल अंकों के आधार पर किसी बच्चे की क्षमता को नहीं आंका जा सकता। फिल्म में शिक्षक का किरदार हमें यह समझाता है कि एक सच्चा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं बल्कि अपने विद्यार्थी की परेशानी को समझता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसकी छिपी प्रतिभा को पहचानता है। दोस्तों, तारे जमीन पर हमें माता पिता और शिक्षकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं थोपने के बजाय उन्हें समझे, स्वीकार करें और उनकी प्रतिभा को निखरने का अवसर दे। दोस्तों, अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, हर बच्चा एक सितारा है, बस जरूरत है उसे पहचानने वाली नजर की, और वो नजर कई बार हमारे शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक दिवस कल थी, लेकिन हमारे लिए शिक्षक दिवस हर दिन है। हर वो दिन जब हमें महसूस होता है कि कोई हमारा पीठ थपथपाता है, और जब हम हताश होते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाता हुआ कोई मौजूद होता है और हमें मंजिल का रास्ता बताता है। भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसे आसान बनाने के लिए हमारी हिम्मत बहुत जरूरी है, ये बताने वाला शिक्षक। जी हाँ, आज हम

कल भी नहीं, कल ही नहीं, आज भी और परसों भी और हर दिन हर मरते दम तक आप अपने शिक्षकों के ऋणी रहेंगे। हमारा ग्रेटिट्यूड कभी खत्म नहीं होगा। आज के इस कार्यक्रम को तो हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, लेकिन ग्रेटिट्यूड कभी समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, फिल्मी लहर यही तक। अब आगे आप सुनेंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित। बने रहे आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम फिर लौट कर आएंगे 12:10 पर हिंदी फिल्मी गानों के साथ, और मैं हूँ आज के सफर में आप सबके साथ RJ नूरी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप 1 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनने के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर, जहां होंगी गीत संगीत और ढेर सारे दिल की बातें। दोस्तों, कहते हैं ना कि संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में हमें बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं शब्द जहां खत्म हो जाते हैं वहां से संगीत की शुरुआत होती है, और हिंदी फिल्मी गीतों की बात ही निराली है। कभी हमें हंसाते हैं, कभी आंखें नम कर देते हैं, तो कभी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर जाते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे यादगार गीत जिसमें प्यार है, दोस्ती है, जुदाई है, खुशी है और जिंदगी के खूबसूरत रंग भी है। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसकी धुन सुनते ही मन में उमंग भर जाती है।

आकाशवाणी के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ एरन एफएम पर आप आनंद उठा रहे हैं मेरे साथ यानी अपनी सबकी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ हिंदी फिल्मी गाने। दोस्तों फिल्मी गाने भी बड़े कमाल के होते हैं, कभी हमारे लव लाइफ के हीरो बन जाते हैं, कभी ब्रेकअप के बाद हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और कभी तो ऐसा लगता है कि फिल्म में गाना हमारी ही कहानी देखकर लिखा गया है। चलिए इसी मूड के साथ सुनते हैं ये अगला गीत।

0: दोस्तों हिंदी फिल्मी गाने यानी कि बॉलीवुड सॉन्ग्स के ना बात ही कुछ और है। चाहे वो पार्टी सॉन्ग्स हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हो, या कुछ ऐसे गाने जो उम्मीद जगाती हो। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही आंखों के सामने किसी अपने का चेहरा आ जाता है, कोई ऐसा जो हमारी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था लेकिन अब हमारी जिंदगी में नहीं है। उनके साथ बिताए पल वापस नहीं आ सकते, उनकी आवाज फिर सुनाई नहीं दे सकती, लेकिन उनकी यादें और उनसे जुड़े ये गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो आइए आज के कुछ नगमे उन अपनों की याद में जो हमसे दूर चले गए और अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये गीत उनके नाम और उन खूबसूरत यादों के नाम जो हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। सुनते हैं बेहद ही भावुक संगीत लेकिन हम सबके बहुत ही चहेता गीत।
1: सुनिए सद्गुरु डिस्कोर्सेस कारवा 2.0 पर।

तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत संगीतमय सफर हिंदी फिल्मी गानों का यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन सफर अभी जारी है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर। दोस्तों, आज हमने गीतों के साथ मुस्कुराया, कुछ धुनों के साथ पुरानी यादों में खो गए और कुछ नगमों ने शायद दिल के किसी कोने को छू भी लिया। कहते हैं ना, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास हमारे साथ रह जाता है। उम्मीद है आज का यह सफर भी आपकी यादों का हिस्सा बन गया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्मी गानों का

सर यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ, हमारी अगली बेहद खास पेशकश आप सबके साथ है। अगले कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे गीतमाला हमारे वीर सैनिकों के नाम, उन बहादुर जवानों के सम्मान में जो अपने घर परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा के लिए देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं। उनके साहस को सलाम, उनकी कुर्बानियों को नमन और उनके जज्बे को समर्पित होंगे हमारे अगले कार्यक्रम के गीत। तो जरूर रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी के 103.1 MHz पर।

0: दोस्तों आप आनंद उठा रहे थे हमारे फौजी भाइयों का दैनिक कार्यक्रम में गीतमाला बैक टू बैक बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ पलों के बाद यानी कि 1 बजते ही आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और 1:05 से अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित। बने रहे आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम फिर से लौट कर आएंगे 1:10 पर हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s to 80s के खूबसूरत गानों के साथ। बने रहे हमारे साथ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया

0: की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉर्डेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Lalema Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से।
2: दोस्तों वेलकम बैक टू गीत संगीत, ढेर सारी बातों और देश दुनिया के ताजा तरीन खबरों का संगम अरुण एफ एम 103.1 MHz। अब वक्त हो चला है हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 80s के गानों को सुनने का। दोस्तों आज हमने आपके लिए चुना है फिल्म बातों बातों में। जी हाँ, 1979 की फिल्म बातों बातों में। इस फिल्म के म्यूजिक है राजेश रोशन के और गीत के बोल हैं अमित खन्ना योगेश के। और इस एल्बम में शामिल है सुनिए कहिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में, और ना बोले ना मैंने कुछ कहा आशा भोसले अमित कुमार के आवाजों में। कहां तक ये मन को अंधेरे, इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। और उठे सबके कदम देखो राम, ये जो गीत है इसको गाया है लता मंगेशकर, पर्ल पदम सिंह और अमित कुमार ने। चलिए श्रोता दोस्तों 1960s, 70s और 80s के गानों के कार्यक्रम में आज सुनेंगे 1979 में रिलीज हुई बातों बातों में फिल्म के कुछ हसीन नगमे।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी की और एनएफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप बैक टू बैक सुन रहे थे 1979 की फिल्म बातों बातों में से कुछ अनमोल नगमे, कार्यक्रम बॉलीवुड म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 80s में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा धुन बदलते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं नई धुनों के साथ, हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के साथ।

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे थे हिंदी फिल्मी गाने बैक टू बैक आकाशवाणी की और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ देर के लिए फिल्मी गानों का सफर हम रोकना चाहेंगे, लेकिन हम फिर से लौट कर आएंगे ठीक 2:30 पर हिट्स ऑफ 90s के साथ। जी हाँ, हिट्स ऑफ 90s, जिस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे 90s के कुछ हसीन नगमे। दोस्तों, वक्त हो चला है कुछ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों की तरफ रुख करने का। 2:00 ही आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज। 2:15 से आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। तब तक के लिए लीजिए सुनिए ये आखिरी गीत हिंदी फिल्मी गानों का इस सेगमेंट का। लेकिन फिल्मी गानों का और हमारा सफर जारी रहेगा और हम फिर से लौट कर आएंगे 2:30 पर हिट्स ऑफ 90s के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज

0: फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
0: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही है। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। ये मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है।

0: अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पन बिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में

0: होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजनियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: तो मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी में मिडी न्यूज, हिंदी में दोपहर समाचार और अंग्रेजी में मिडी न्यूज सुनने के बाद अब वक्त हो चला है आप सबको फिर से लिए चलने का उन गलियों में जहां होती है दिल से दिल की बात और यादें ताजा करती हैं 90s की। जी हाँ, गानों के माध्यम से और कार्यक्रम है हिट्स ऑफ 90s। हमारे कई श्रोता दोस्त इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं क्योंकि हर रोज यानी कि हर दिन चलने वाला यह कार्यक्रम आप सभी को बेहद बेहद बेहद पसंद है। उस जमाने के लोगों को तो पसंद है ही, साथ ही साथ उनको भी पसंद है जो आज के जमाने के जो लिसनर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है ना कि पुराने जमाने के गाने पुराने लोगों के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट सुना है, कई सारे यंगस्टर्स यानी कि हमारे जेन जी जेन अल्फा जिनको कहते हैं, उनके भी प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे 90s के गानों को मैंने देखा और सुना है। तो आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आरजे नूरी आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आज मैंने जो गाने चुने हैं वो बेहद ही खूबसूरत एक समाज को आईना दिखाने वाली फिल्म से लिया गया है। कहते हैं ना कि कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वे हमें आईना भी दिखाती है। और जब पर्दे पर दिखाई देने वाली कहानी समाज की किसी कड़वी सच्चाई से मिल जाती है, तब जन्म लेती है एक वास्तव। तो दोस्तों, आज के हिट्स ऑफ 90s में मैं लेकर आई हूं साल 1999 की एक ऐसी फिल्म जिसने 90 के दशक के सिनेमा को एक अलग पहचान दी थी। जी हां, वास्तव द रियलिटी। महेश मांजरेकर द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म केवल एक गैंगस्टर की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी हालात, गुस्से, गलत फैसलों और अपराध की दुनिया में धीरे धीरे फंसते एक आम इंसान की। दोस्तों, फिल्म के बारे में और फिल्म की कहानी के बारे में तो बातें करेंगे ही, चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये पहला गीत।

फिल्म में संजय दत्त ने रघुनाथ यानी कि रघु शिवालकर की भूमिका निभाई, जबकि नम्रता शिरोडकर, संजय नार्वेकर, दीपक तिजोरी, मोनिश बहल, शिवाजी साटम, रीमा लागू और परेश रावल जैसे कलाकारों ने कहानी को बेहद प्रभावशाली बनाया। और एक दिलचस्प बात, रघु का किरदार मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के जीवन से प्रेरित माना जाता है, लेकिन फिल्म ने उसे हूबहू जीवन के रूप में नहीं बल्कि एक सिनेमाई कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। दोस्तों, लेकिन वास्तव की खूबसूरती सिर्फ एक इसके गीतों में नहीं बल्कि इसकी कहानी की सच्चाई में थी। रघु कोई पैदा हुआ अपराधी नहीं था, वह एक सामान्य परिवार का युवक था जो रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रहा था। एक छोटी सी शुरुआत, गलत संगत, परिस्थितियों का दबाव और एक गलत कदम और धीरे धीरे उसका जीवन अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है। दोस्तों, फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है, गलत रास्ता अक्सर एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों से शुरू होता है, और शायद इसलिए फिल्म का नाम भी बिल्कुल सटीक था, वास्तव द रियलिटी। चलिए बढ़ते हैं और संध्या अगला गीत।

हर टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे हर

दोस्तों आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज मैंने आप सबके लिए चुना है 1999 की फिल्म वास्ट द रियलिटी। और इस गीत को यानी कि हर तरफ है शोर को सुन रहे थे विनोद राठौड़, अतुल काले और साथियों की आवाज में। दोस्तों वास्तव हमें अपराध का ग्लैमर नहीं सिखाती बल्कि उसके अंजाम की कीमत दिखाती है। फिल्म में रघु की सफलता जितनी तेज दिखाई देती है उसका पतन उतना ही भयावह है। पैसा, ताकत और डर कुछ समय के लिए इंसान को बना सकते हैं लेकिन अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने जमीर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और फिल्म का सबसे बड़ा मार्मिक पक्ष है एक माँ और उसके बेटे का रिश्ता। रीमा लागू द्वारा निभाई गई शांता की भूमिका हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर चलता है या चला जाता है तो उसकी सजा केवल उसे नहीं भुगतनी पड़ती, पूरा परिवार भुगतता है। यही कारण है कि वास्तव आज भी सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म की नहीं लगती, यह परिवार परिस्थितियों, चुनावों और उनके परिणामों की कहानी बन जाती है। चलिए आगे सुनते हैं अगला गीत।

श्रोता दोस्तों, आज के हिट्स ऑफ 90s में वास्तव हमें सिर्फ पुराने गीतों की याद नहीं दिलाती, यह हमें एक सवाल भी देती है। अगर जिंदगी हमें गलत मोड़ पर ले जाए तो क्या हम वापस लौटने का साहस रखते हैं? क्योंकि जिंदगी में हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हमारे फैसले हमेशा हमारी जिम्मेदारी होते हैं। और शायद यही वास्तव की सबसे बड़ी सीख है। गलत रास्ते पर मिली सफलता भी अंततः हार ही होती है, और यही रास्ते पर किया गया संघर्ष ही असली जीत है। इसलिए दोस्तों, सही रास्ते पर ही चले, और संघर्ष भी है तो आगे बढ़ने का हिम्मत रखे। अब इसी फिल्म की इस कहानी के साथ और इसी सीख के साथ ही आपको बता दूं कि कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s आज के लिए बस इतना ही। लेंगे ये आखिरी गीत और आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में, यानी कि आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद 3 बजे का समय रहेगा मिशमी कमान कार्यक्रम का, और उसके तुरंत बाद ताई खमती कार्यक्रम सुन पाएंगे। हम फिर से लौट कर आएंगे 3:30 पर।

0: Phung Ying Khao Pong HIV Human Immunodeficiency Virus Anani Kacham Tong Wei Ke Au Ni Khem Sa Nam Ho Phung Mao Khao HIV Ne Luk Nut Hom Yu Pachai Ping Hom Hak Kan Ke Luk Khem Mat Ko Ngai Ma Chai Ke Luk Me Mai Au Si La Kha On Pachau Mai Ko Pien Ma Chup Kan Ko Pien Nam Ni Si Lau Khai Ma Ka Nam Ho Nam Chom Phung Ying Khao An Leng มัดไว้ตาหุ่มนั่งกดมือกดโคหุ่มกินขั้นซ้ำย่องกับซีไหนเอชไอวีอันนั้นไหนมาเปลี่ยนน้ำนิสิไขมากาน้ำหออะคิงอย่างไหมอันนั้นเอชไอวีไหนฮันุแลมซีฮันไหนสุยักวันเอาซีเข้มซาเอาเป็นต้องหางประเจ้าไหมน้ำหอจอมอะคิงน้ำนาลีเนอร์ของสตูดิโอไหมชื่อกันว่าจะฟ้าป้อยไหนข้ามใจคำตีตึกไขไหมสุดเยี่ยวหอ
1: Dil se dil tak baat pahunchi milte milte sanam ho
2: geet sangeet
3: gyan aur manoranjan ke guldaste se
2: pyar bhare alfazon mein
3: dil se dil ki baat
2: bas aapke naam
3: ye hai aakashwani itanagar ka arun fm 103.1 megahertz
4: श्रोता दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से और मैं हूं आप सबके साथ आज के सफर में आरजे नूरी। दोस्तों वक्त हो चला है आपको लिए चलने का बॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। जी हां, एंटरटेनमेंट की दुनिया में तेज तरार चक्कर लगाने का, क्योंकि बॉलीवुड में सितंबर की शुरुआत ही हुई है और सिनेमा घरों से लेकर ओटीटी तक हर तरफ एंटरटेनमेंट का तड़का लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड अपडेट्स। तो श्रोता दोस्तों सबसे पहले सिनेमा घरों की बात करते हैं। सितंबर 2026 बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के लिए काफी पैक्ड महीना है। जी हाँ, हाल ही में 4 सितंबर को मिर्जापुर द मूवी ने सिनेमा घरों में दस्तक दी है और ओटीटी की बेहद लोकप्रिय क्राइम फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर देखने को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता रही है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रवि किशन जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं और अब बड़ी थिएट्रिकल रिलीजेस पर नजर डालिए। 11 सितंबर को अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर हैवान रिलीज होने वाली है। इसी तारीख को घमासान भी सिनेमा घरों में आएगी और जिसमें प्रतीक गांधी और अर्शद वर्सी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। यानी सितंबर का दूसरा सप्ताह भी सिनेमा लवर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो जिन लोगों को सिनेमा देखना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है, वीकेंड पर दोस्तों यारों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है, तो उनके लिए बेहद ही बेहतरीन सप्ताह होने वाला है। अब बात करते हैं ओटीटी की। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सिनेमा हॉल से ज्यादा अपने घर का सोफा पसंद है, तो वही सितंबर आपके लिए भी कम एक्साइटिंग नहीं है। जी हाँ, इस सप्ताह ओटीटी पर कई बड़े टाइटल्स आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है गांधारी, जिसमें तापसी पन्नू एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही है। रिलीज के बाद फिल्म स्ट्रीमिंग चार्ट्स पर तेजी से ऊपर गई और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा देखने को मिल रही है। और फिर आ गए कॉमेडी लवर्स की फेवरेट फ्रेंचाइजी धमाल 4। जी हाँ, अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वर्सी और जावेद जाफरी जैसे कलाकारों वाली यह फिल्म 4 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है। इसके साथ ही

ओटीटी पर जीडी एंड द कोर्ट और उमाधम जैसे अलग अलग जॉनर के टाइटल्स भी दर्शकों को देखने को मिल रही है, यानी कॉमेडी चाहिए, ड्रामा चाहिए या थ्रिलर। इस सप्ताह ओटीटी का मेन्यू भी काफी लंबा है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, अब बॉलीवुड का ट्रेंडिंग टॉपिक। आजकल एंटरटेनमेंट का खेल सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रह गया है। एक फिल्म थिएटर में रिलीज होती है, फिर ओटीटी पर आती है और इसके बाद सोशल मीडिया पर उसके सीन्स, डायलॉग्स और परफॉर्मेंसेस ट्रेंड करने लगते हैं। यानी अब फिल्म की पॉपुलैरिटी का सफर कुछ ऐसा ही हो गया है। थिएटर, फिर ओटीटी, फिर सोशल मीडिया, फिर वायरल डिस्कशंस। और गांधी की शुरुआती स्ट्रीमिंग पॉपुलैरिटी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी बड़ी ट्रेंड है ओटीटी और थिएटरिकल सिनेमा का बढ़ता ओवरलैप। जी हाँ, मिर्जापुर जैसे ओटीटी फ्रेंचाइजी का थिएटरिकल मूवी बनना दिखाता है कि दर्शकों की पसंद बदल रही है और लोकप्रिय डिजिटल स्टोरीज अब बड़े पर्दे पर भी अपनी जगह बना रही है। अब छोटे पर्दे या बड़े पर्दे जैसा कोई बात नहीं है, इट्स ओवरलैपिंग और हर किसी को हर तरह की चीजें पसंद आ रही है। यानी कि दर्शकों का जो टेस्ट है ना वो भी बदल चुका है, मूड बदल चुका है, इसलिए फिल्म मेकिंग का तरीका भी बदल चुका है। और हम आपको इसी तरह के मेन्यू परोसते रहेंगे ताकि उसमें से आप चुन सके आपके टेस्ट के मुताबिक। तो ये था बॉलीवुड अपडेट्स आज दूसरी प्रसारण सभा में आकाशवाणी के UNFM 103.1 MHz पर RJ नूरी के साथ। चलिए अंत में, यानी कि बॉलीवुड अपडेट्स के अंत में ये गीत आप सबके लिए।

इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि सेप्टेम्बर लेन मनी आजोक तर देवार ए पोहनसों आजमबाजी पुनी मिनट मुके बिशम लकेम वांचो साइका पों कपई पोंवन का हो पाई फाले वंग का वंग सुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए चावन नुमा था पों ए माओ मा मोहली टोई ताई जंग जाई ngai dong le ngo tai kya kha to chu indian economy let azam pong ba ta jo anat pun a chet person chong dong le lenwei tai kya e des economic ho chak ho jong ngai le ahopu bo ma india policy zinge jo chiman des ang tai jai kya atha policy zinge jo amman des ang achang le hai an pu le van le modi a jak ka ani new delhi ma sriram college of commerce srccm centenary pon pon tu so van ke jang van ka je ma van le bo ma chi e India ta fastest growing major economy des ang achang ang satle lenu te kya chawan nu pang yo ngai le ngan tai pu le chu fan le Arunachal Pradesh governor lieutenant general retired KT Parnaik e China des mi chawan long kho die plan an kya a home des chawan long kho achan achong ang ke mongte kan sung phai lenu te le haja zai le des chawan long kho integrity सेसन पुकु मा इंडिया मेकिंग नाका देस्ता अंग आसयादोन बोमा पंगनु लम मा अचोना था ल तयंगो अंग्या मोट चंगतेले वनले गवर्नर पटनाइक के हजक्का मनि पुने होनोई मा असो अपोख्या पीआईसी सीसीएएस चाइना कॉन्फ्रेंस 2026 टू सो मवन क्या जंगवन काजे मा वनले बोमा ची एम इंडिया जोंग मा चाइना ता तमुक तमसा तमजी देस chang taile thaiba hom e arunachal pradesh ya ladak tokang om la le hom des pai long azi kya zaita indian chawan long ko hom chawan he le ala cha le ngo taile bu mahaja han pak ma india making khan zai le tai ngo am kya mot le chu van le ईटानगर ममनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मक्या डीके ऑडिटोरियम मा आसो अपो के टीचर्स डे फंक्शन टू सो मा स्टेट अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर बालो राजा या एजुकेशन मिनिस्टर पासंग दोर्जी सोना नी ए अरुणाचल प्रदेश अंक्या मा मा मोहन नुई तो क्या मिहक पुनी लानन मास्टर थम अंग स्टेट टीचर्स अवार्ड 2026 अवार्ड प्राइज तम फल्ले कोतुन ले आजा तू सो मा मिस्टर मिनिस्टर बालो राजा एम नौसम सनवान जिंग जौले अमई अंगलाइन मास्टर थम एम मोकसा तैक्या असु अमई मोट सत्फो आचोक असन हु अंतो ले लाइनोट मास्टर थम हो जिंग जिंग मा देस जिंग जौ हो थम अंग ए सत्तेपु

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों वांछे श्रोताओं के समाचार के बाद आपका स्वागत करते हैं आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आरजी नूरी के साथ। सुनने के लिए आप सब तैयार हैं हिंदी फिल्मी गाने और मैं भी तैयार हूँ अपने लिस्ट के साथ। और लिस्ट में अभी वांछे श्रोताओं के समाचार के बाद ये गाना आप सबके लिए।

श्रोता दोस्तों, फिल्मी गानों के सफर को देते हैं थोड़ा सा विराम और कुछ ही पलों में ठीक 4 बजे का समय रहेगा क्षेत्रीय भाषा इदुमिश्मी में सुनने का समाचार। बने रहे आकाशवाणी के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। 4:05 पर हम फिर हाजिर होंगे आप सबके साथ चलने को एक और म्यूजिकल जर्नी यानी कि हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के साथ। ये हमारी दूसरी प्रसारण सभा में मैं हूँ आप सबके साथ आरजे नूरी। चलिए चलते हैं और सुनते हैं इदुमिश्मी श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाज।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सिंफो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का समा कीजिएगा वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
3: चिलापुची जी एरो इन्यामने निमाचिनी इदुमिश्मी आहो लाकिजी तिबार प्रानो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनी लामे इंडिया तिगाची आमे हाया है 7.8% बादा लागाची कहा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC न्यू दिल्ली माने सेंटिनरी सेलिब्रेशन अखा महो मोदी ने गिबा ने आति आउता माची पुमे में इंडिया तिका माची आमे हाया है। बहा में प्राया बदन आथुगा दा लागे बाचिका आई महो प्राइम मिनिस्टर में लामे बहाची फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बु एचा SRCC कॉलेज मा आजो ट्रोहू बाचिदा लागे बाचिका। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पारनायक में आतिकाची इमु आलम्रोगो चाइना में बॉर्डर मा लिखी रूबे एगा माहो प्राने इनियाची आतिकाची लिखी है आतुटी हुए जीना लागाचिका। आई माहो लामे इंफ्रास्ट्रक्चर दोने कनेक्टिविटी उजी है बॉर्डर अनुच्छेद के बने दुकुम ने आतुती होने प्रावधा लाओगा चिका। अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर बालो राजा दोने एजुकेशन मिनिस्टर पासंग दोर्जे सोना में काप्रिंग आजो छुआ आहिगा अरुणाचल प्रदेश माची है स्टेट टीचर्स अवार्ड 2026 है। टीचर डे फंक्शन है DK ऑडिटोरियम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माने अखा महो अवार्ड हागे बाचिका। आई महो बालो राजा में टीचर्स आलम्रोगो तांदो नोगेबा ने लामे आयाउजी में ट्रू नेशंस बिल्डर द लागेबा चिखा। आई महो टीचर्स आलम्रोगो आबा आजो ट्रू ने वे आलम्रोगेबा ने आबा ने बू आई प्राने आजो ट्रू ही वे जी ना लागेबा चिखा। टीचर्स दे इनी एना महो तवांग डिप्टी कमिश्नर नामयल अंगमो में तानुकानी बेस्ट परफॉर्मेंस टीचर्स है पुमे तवांग डिस्ट्रिक्ट माची आजो छुआ आलम्रो काजे में 100% रिजल्ट है। एचआर CBSE क्लास 10 नेट 12 एग्जामिनेशन मा चियाही बा दोने गेबा फेलिसिटेट यही बा चिखा। एचआर फेलिसिटेशन प्रोग्राम है ऑडिटोरियम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग माने काजिया टीचर में आजो छुआ आलम्रो एकेडमिक परफॉर्मेंस प्राणावे गेबा ने आरो नने रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन है डेडिकेशन सिंसियरिटी माने जोआ टीचर्स अनुभव के बने हागा ही बाचिखा। एचआर टीचर दे इनी है कामले ने अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट मा पुमे स्कूल्स मा माने सेलिब्रेशन एगा ही बाचिखा। ज्वाइंट मार्केट इंस्पेक्शन ने एनफोर्समेंट ड्राइव में UPA ने तिगदो पपुमपारा डिस्ट्रिक्ट मा होली किड्स पब्लिक स्कूल यूरो किड्स प्री स्कूल न्यूर्स दोने UPA 2 मार्केट मा आने हैं ट्रेडिंग लाइसेंस अखाची गाची दोने स्कूल्स मानुमा तबाको अमया ना गाची अथुकाशे माहो मांगा दुकान है वैलिड ट्रेडिंग लाइसेंस गा माहो कानी दुकान है एक्सपायरी लाइसेंस चिया दा लगा चिखा। आई माहो पाओ अमशा है एजेंट ब्रोने मा मंगा फाइन है वैलिड लाइसेंस गा माहो दुकान खेगे दोने आशिया ही बा माहो तबाको अल्कोहल आयाउजी है स्कूल मानुमन दोने अमया महो सीच यही बा चिखा। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर में येलो कलर वार्निंग का कपड़ा है। होलोमा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश मा पापुम परे दोने ट्विन कैपिटल सिटीज ईटानगर ने नहलागन बिचिखा। आयाउजी डिस्ट्रिक्ट मा है आयना मया अब्रिल ची दोने तंदो आयोदा लगा चिखा। इंडिया तिका मचे साध्विक सैराज रंकी रेड्डी ने चेरक सिटी में चाइना मास्टर्स फाइनल मा बिश्वजी जी खियाही बा चिखा। वर्ल्ड नंबर 5 प्लेयर मलेशिया मची नूर मोहम्मद अजीर अयूब ने तानवी क्योंग वा 21-15, 18-21, 21-11 पॉइंट माने सेमीफाइनल मा अन्याही बा चिखा। एशियन गेम्स चैंपियनशिप है चाइना मची ही जी तिंग ने रिंग जियोंग यू में एतानी एंजता 150 PM कोर्ट वन माने एचा सेकेंड टाइटल गे बने तानो एम आई औ चिखा एतनी ची केरा हो आई मान दो भाई एचमता आशियाओं से खेमोने तान दो अन्यू मीना ची आशी चाहू जी

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे ईदो मिश्री श्रोताओं का समाचार। अब वक्त हो चला है फिर से चलेगा गीतों के सफर में। आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। चलिए शो में आगे सुनते हैं जवान फिल्म का ये खूबसूरत गीत। 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।

मेगा नहीं जुड़े रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, क्योंकि संगीत और यादों का ये सिलसिला अभी जारी है। तो दोस्तों, अब मुझे और प्रसारण अधिकारी पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एन विश्वजीत को आप सभी से इजाजत चाहिए। उम्मीद है कि आज या अपर्णा के साथ आपका ये सफर सुहाना और हर गीत आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी और हर पल इतना खूबसूरत बनेगा कि आपका ये शाम बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो चलिए सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। और जाते जाते दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार।

0: दोस्तों, अभी आप हमारे तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम यानी कि तांगसा में समाचार सुन रहे थे। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वो कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। आज इसी थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरे प्रसाद सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता एन विश्वजीत तथा स्टूडियो और HPT में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी का तह दिल से स्वागत करते हुए आप सभी की अपनी आरजी अपर्णा मौजूद है आप सभी की खिदमत में। करने आई है एक बेहद खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम और शुरू बस करेंगे हम आपसे कुछ ही देर में गुड इवनिंग ईटानगर का प्रोग्राम। लेकिन इससे पहले हम जी हाँ शुक्रिया अदा कर देते हैं RJ नूरी का, जिन्होंने अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी की भरपूर मनोरंजन की है। तो शुक्रिया RJ नूरी मुझे स्टूडियो हैंडओवर करने के लिए। बहरहाल दोस्तों, आपसे बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम के साथ। बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

गुड इवनिंग ईटानगर के इस बहुत प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वो कंपोजिट प्रोग्राम होता है दोस्तों, जिसमें ना हम केवल आप सभी की मनोरंजन करवाते हैं बल्कि ज्ञानवर्धक इन्फॉर्मेशन भी साझा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज ऐतिहासिक पन्नों में क्या राज छुपे हुए हैं, यानी कि आज के दिन क्या मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी। 1522 में फर्डिनेंड मैग्नल का स्पेनिश जहाज विक्टोरिया समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के बाद पहली बार स्पेन वापस लौटा था। आज ही के दिन 1838 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह का जन्म हुआ था। 1889 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1939 में दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। दोस्तों आज ही के दिन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ वाले ऑपरेशन जिब्राल्टर का कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज ही के दिन 1968 में अफ्रीका के छोटे से देश स्वाजीलैंड अब जो है एस्वानी स्थित है को पूरे ब्रिटेन ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी, यानी कि आज ही के दिन अफ्रीका के छोटे देश स्वाजीलैंड को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये थी मुख्य घटनाएं हमारे इतिहास के पन्नों से आज के दिन आप सभी के लिए एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के तौर पे, और अब आप आनंद उठा पाएंगे बेहद प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।